0: सुबह के समय 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: त्याग वो शक्ति है जो व्यक्ति को महान बनाती है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का सम्मान करता है। त्याग हार नहीं बल्कि उच्च उद्देश्य के लिए किया गया सबसे बड़ा साहस है। त्याग से ही रिश्तों में प्रेम, समाज में सद्भाव और जीवन में सम्मान मिलता है।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।

0: नितिन मुकेश के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे अदरक और हल्दी की खेती के संदर्भ में। हमारे द्वीपों में अदरक व हल्दी की खेती बहुत ही आसानी से की जा सकती है और वैज्ञानिक ढंग से खेती कर इससे अच्छा आर्थिक मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ की जलवायु व भूमि इनकी खेती के लिए उपयुक्त पाई गई है। यहाँ पर इनसे ज्यादा फसल किसान भाइयों को नहीं मिल पाता, जिसका मुख्य कारण तकनीकी ज्ञान की कमी लगती है। किसान भाइयों, इन दोनों फसलों को जल निकासी वाली भूमि या ढालू भूमि पर बने खेतों में उगाया जा सकता है। नारियल, सुपारी व फलों वाली फसलों की छाया में इन्हें अंतः फसल के रूप में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी करते समय 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर मिलाएं। अदरक में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश की जरूरत प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन व पोटाश को 2 से 3 भागों में बांटकर देते हैं। किसान भाइयों, अदरक की खेती के लिए अदरक की गांठों का इस्तेमाल किया जाता है। बीज के लिए आप अदरक की जिन गांठों का इस्तेमाल करेंगे उनमें कम से कम एक अंकुर जरूर हो तथा वे 1 या 2 इंच लंबे जरूर हो। बीज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अदरक रोग रहित होना चाहिए। अदरक के इन टुकड़ों को जमीन में 2 इंच गहरा गाड़ते हैं। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पंक्ति से पंक्ति के बीच 30 सेंटीमीटर का फासला रखा जाता है। गांठ से गांठ की दूरी हमने जैसे आपको बताया 15 सेंटीमीटर रखकर जब आप बीज जमीन में गाड़ते हैं तो उस वक्त उसे मिट्टी से ढक दें। 10 से 20 दिनों में अंकुर निकल जाते हैं। एक हेक्टेयर भूमि में लगभग 1200 से 1800 किलोग्राम तक गांठें लगती हैं। अदरक के पौधों पर 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। जब अदरक के पौधे में पत्तियां पीली पड़ जाएं तथा तना सूखने लग जाए तो उस वक्त फसल को खोद लेना चाहिए। अगर बाजार में अदरक की मांग कम हो तो 1 साल के लिए भी इन्हें खेत में छोड़ा जा सकता है। हरी अदरक की पैदावार 2000 से 4000 किलोग्राम तक मिलती है, जबकि सूखा अदरक इसका 1/5 हिस्सा होता है। बीज को जमीन में गड्ढे बनाकर रखें। गड्ढों के ऊपर तख्त लगाकर मिट्टी से ढक दें। गड्ढों में हवा पहुंचने के लिए जगह जरूर छोड़ दें। साथियों, जहां तक हल्दी का सवाल है, हल्दी की 2500 किलोग्राम गांठें प्रति हेक्टेयर भूमि में लगती है। हल्दी के बीजों को लगाने की दूरी व लगाने का ढंग अदरक के समान ही है। हल्दी में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस व 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में लाना चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश को 2 बार में इस्तेमाल करें, बीज लगाने के 30वें दिन व 60वें दिन। हल्दी की फसल 8 से 9.5 महीने में तैयार हो जाती है। हल्दी की खेती करते समय 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें व मिट्टी चढ़ाएं। किसान भाइयों, अदरक व हल्दी को खोदते समय यह ध्यान रखें कि गांठें कटे नहीं। हल्दी की गांठें खोदने के बाद पौधे के तने से काट लिए जाते हैं। निकाली हुई हल्दी को लंबी और गोल गांठों के अनुसार छांट लिया जाता है।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। विषय था हल्दी व अदरक उद्यान।

आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजे हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग

0: ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with the Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Prime Minister Narendra Modi is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron in what is expected to be a highly productive and wide-ranging visit. Notably, this marks India's 13th participation at the G7 summit and the Prime Minister's 7th consecutive participation. India's regular participation at the G7 summit reflects the increasing recognition of New Delhi's role and contributions in addressing global challenges related to peace, security, development and environmental sustainability. A report.
2: India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement as well as initiatives such as Bharat Innovates in Nice and India's role as the official AI partner country at upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing and resilient supply chains. Significantly, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including reducing imbalance, international partnerships and artificial intelligence, closely align with India's strengths and interests. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
1: Earlier yesterday, India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also linked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में

जहाँ रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानी चंगा आज दिन में 11 बजे शहीद दीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और यह जलयान दोपहर बाद 1 बजे शहीद दीप से स्वराज दीप जाएगा तथा यह जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज दीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज दीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज दीप से शहीद दीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दोपहर बाद 2:30 पर शहीद दीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज दीप की यात्रा पर एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराज दीप से छूटकर शहीद दीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अब सुनिए कल होने वाली यात्राओं के बारे में। स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल यानी बुधवार 17 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इस जलयान की रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर 12 बजे। एमवी बाराडान कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद दीप जाएगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी चंगा कल सुबह 6:15 पर स्वराज दीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज दीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद दीप, स्वराज दीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए एमवी रानी चंगा कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी बृहस्पतिवार 18 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद दीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद दीप से स्वराज दीप के लिए रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज दीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी हटबे कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज दीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज दीप से शहीद दीप जाएगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। शहीद दीप की यात्रा पर एमवी बाराटान कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद दीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज दीप की यात्रा पर छूटेगा और ये जलयान अगले दिन यानी बृहस्पतिवार 18 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज दीप से छूटकर शहीद दीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी जॉली बॉय कल 17 तारीख को सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी बृहस्पतिवार 18 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी सेंटिनल बृहस्पतिवार

0: 18 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान उसी रोज़ रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:15 हुए हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बातें क्षमा की। दोस्तों, क्षमा वो है जो बुझकर भी हमें रोशनी किया करती है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम ढलने का कोई बहाना बताती है। मोहब्बत में तपना तो मुकद्दर है अपना, बुझते बुझते भी ये दुनिया को रोशन कर जाती है।

दोस्तों, हजारों परवाने फिदा होते हैं जिस पर वो शमा भी किसी एक की शाख में दफन हो जाती है। दस्तूरे इश्क है ये निराला बहुत, जहां रोशनी भी अंधेरे में सिमट जाती है।

दोस्तों वो शमा की महफिल ही क्या जिसमें दिल खाक ना हो, मजा तो तब है चाहत का जब दिल तो जले पर राख ना हो।

0: दोस्तों, शमा की लौ से अब हमें दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित था शमा शीर्षक पर और प्रस्तुत कर रही थी सुनीता। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:30 हुए हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान के 271वीं कड़ी। गायक कलाकार लक्ष्मी शंकर और रामकृष्ण चंदीश्री।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतुचक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्ज्वल शिला पर बैठे हुए श्रीराम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 271वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे लक्ष्मी शंकर और रामकृष्ण चंदीश्री, तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए वतन के गीत।

संवेद स्वर में अभी आपने सुना वतन के गीत। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के समय 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण।

0: पहले सुनिए मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हुई। जनसेवा और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार सागर तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने की संभावना है, जिसके चलते समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को कल यानी 17 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही क्षणों के बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 MHz पर हम रिले करेंगे मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम 7:30 पर, जिसके तहत खेल जगत कार्यक्रम में खेल खिलाड़ी और योग इस विषय पर ए एलंगो से ली गई भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप त्रिचुर वी रामचंद्रन का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत गाते चल का आनंद लीजिएगा सुबह 10 बजे। दिन में 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत का लुत्फ आप उठा पाएंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साथ ही फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे। 12:30 पर मलयालम में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल लोकम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गुलाम अली को आप सुन पाएंगे 1:10 पर। 1:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगा, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो का आनंद लीजिएगा 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा सैमुएल एंड्रू द्वारा गाए गीत आपको सुनवाएंगे। 4:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को सुन पाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महालेर उड़गम। बांग्ला कार्यक्रम 5:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिधारा। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 6 बजे। 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शामी बहार। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएगी 7:15 पर। 7:20 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम देश की शान। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार, उसके पश्चात गौरव ग्रांड प्रसारित की जाएगी। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ

0: वार्ताः भारतस्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्रसहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावानगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सहविश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्थामन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोकसेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सुबह 5:30 बजे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 2.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। सापेक्ष आर्द्रता 92% और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:56 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:45। ये थी मौसम की जानकारी।

अब सुनिए आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 आज ही दिन में 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम आज सुबह 7:30 पर, जिसके तहत आप सुनेंगे खेल जगत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत खेल खिलाड़ी और योग इस विषय पर ए एलंगो से ली गई भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे। समय याद रखिए, आज सुबह 7:30। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुबह 9 बजे आप सुन पाएंगे।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन

करेंगे। पर्यटन विभाग संस्कृति, खेल और स्थानीय परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मॉनसून कार्निवल का आयोजन करेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं और नानकौड़ी और कैम्बल बे होते हुए चेन्नई की यात्रा पर जाने वाले जहाज MV कैम्बल बे की बची हुई टिकटों का वितरण कल से जारी किया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। नई दिल्ली में कल से चल रहे विकसित भारत युवा संसद का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन से युवा नागरिकों को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्यप्रणाली की व्यवहारिक समझ प्राप्त हो सकेगी। विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं को राष्ट्रीय चर्चा में शामिल करता है। संसद में प्रत्येक टीम से एक प्रतिनिधि, नारी शक्ति वंदन, समावेशिता को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047 विषय पर सदन को संबोधित करेगा। प्रत्येक प्रतिनिधि को बोलने के लिए 3 मिनट का समय मिलेगा। युवा प्रतिभागियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए कल विकसित भारत युवा संसद 2026 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पर्यटन विभाग, शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, जनजातीय कल्याण, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद तथा अन्य संबद्ध विभागों के सहयोग से 26 से 28 जून 2026 तक कार्बाइंस्कोव तट पर मॉनसून कार्निवल का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य पर्यटन, संस्कृति, खेल, स्थानीय परंपराओं, हस्तशिल्प, व्यंजनों और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ लाना है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें बीच स्पोर्ट्स फेस्ट के तहत 26 और 27 जून को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक कार्बाइंस्कोव तट पर पुरुष और महिला श्रेणियों में वॉलीबॉल, नॉकआउट टूर्नामेंट और रील मेकिंग शामिल है। इस दौरान प्रदर्शनी मैदान में फूड फेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। आवेदन पत्र पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मॉनसून फूड एंड स्पाइस फेस्ट के लिए 23 जून, बीच वॉलीबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए 24 जून जबकि रील मेकिंग के लिए 25 जून दिन में 11 बजे तक पंजीकरण किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया भाषणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के जरिए 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। क्लिनिकल रिसर्च यूनिट होम्योपैथी की ओर से हाल ही में CISF यूनिट में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए स्वास्थ्य कल्याण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जागरूकता पहल आयुष मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य CISF कर्मियों और उनके परिवारों के बीच साक्ष्य आधारित आयुष स्वास्थ्य देखभाल कल्याण रणनीतियों और निवारक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर आर चिदम्बरम और इंस्पेक्टर कल्याण क्षेत्री ने बल की स्वास्थ्य तत्परता के अत्यंत महत्व पर जोर दिया। इस दौरान अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर शांति ने होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित प्रभावशाली अनुसंधान पहलों पर व्याख्यान दिए। रिसर्च फेलो डॉक्टर तन्मय हल्दर ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम और व्यावसायिक तनाव की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बल के साथ किए जा रहे सहयोगात्मक अनुसंधान और देशव्यापी पहल प्रोजेक्ट मान के बारे में भी जानकारी साझा की। इस अवसर पर 54 CISF कर्मियों की विशेष होम्योपैथी वेलनेस किट वितरित किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। UPSC ने उम्मीदवारों को ये भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित

होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। चेन्नई से आ रहे जहाज एमवी स्वराज द्वीप के आज दोपहर 12 बजे तक श्रीविजयपुरम पहुंचने की संभावना है। जहाज में 550 से अधिक यात्री और 350 से अधिक मीट्रिक टन माल लाया जा रहा है। जहाज हेडो जट्टी पर लगेगा। इस बीच नानकौड़ी और कैम्बल बे होते हुए चेन्नई की यात्रा पर जाने वाले जहाज एमवी कैम्बल बे

0: और 350 से अधिक मीट्रिक टन माल लाया जा रहा है। जहाज हेडो जट्टी पर लगेगा। इस बीच नानकौड़ी और कैम्बल बे होते हुए चेन्नई की यात्रा पर जाने वाले जहाज एमवी कैम्बल बे की बची हुई टिकटों का वितरण कल दोपहर 2 बजे से जारी किया जाएगा। जहाज 18 तारीख को सुबह 9 बजे हेडो जट्टी से प्रस्थान करेगा। जनजातीय सब्सिडी योजना के अंतर्गत जनजातीय समूहों के बीच आजीविका सृजन और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से 120 सोनाली देसी मुर्गियां सौंपी गई हैं। इन्हें स्ट्रेट आइलैंड में रहने वाले जनजातीय लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के बीच घरेलू पोल्ट्री फार्मिंग, आय और स्वरोजगार में वृद्धि और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विभाग जनजातीय कल्याण और आजीविका वृद्धि पर विशेष जोर देते हुए पूरे द्वीप समूह में विभिन्न पोल्ट्री और पशुधन विकास कार्यक्रम सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। भारत सरकार की महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संकट, हिंसा या शोषण का सामना कर रहे महिलाओं और बच्चों को तत्काल सहायता, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्थापित समर्पित सहायता सेवाएं हैं। इन हेल्पलाइनों का मुख्य उद्देश्य उनकी सुरक्षा, कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। समाज कल्याण निदेशालय के तहत महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष में ये समर्पित हेल्पलाइन नंबर 2400 घंटे सातों दिन और 365 दिन काम कर रहे हैं। ये हेल्पलाइन पीड़ितों को संबंधित आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और अन्य सहायता सेवाओं से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त ये हेल्पलाइन काउंसलिंग भी प्रदान करती है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने द जिस्ट को दिए गए साक्षात्कार में कहा, ग्रेट निकोबार भारत के समुद्री भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इस समाचार को द डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। द्वीप समाचार ने इस खबर के अलावा पर्यटन निदेशालय द्वारा मॉनसून कार्निवल का आयोजन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यात्री सुविधा दिवस मनाए जाने के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने नशा मुक्त अभियान के तहत खास मानसिक स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को सचित्र छापा है और द इको ऑफ इंडिया ने द्वीप समूह के PRI सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री से ग्रामीण विकास कार्यों के लिए फंड का सही बंटवारा सुनिश्चित करने की अपील करने के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन करेंगे। पर्यटन विभाग संस्कृति, खेल और स्थानीय परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मॉनसून कार्निवल का आयोजन करेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं और नानकौड़ी और कैम्बल बे होते हुए चेन्नई की यात्रा पर जाने वाले जहाज MV कैम्बल बे की बची हुई टिकटों का वितरण कल से जारी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 7:15 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

दोस्तों, देश की बात जब भी आती है तो नाम भारत का हमें गर्व से भर देता है। सदियों से भारत ने दुनिया में अपनी मिसाल कायम की है। हमें अपना देश बहुत प्यारा है। भारत हमारी जन्मभूमि है और यही हमारी कर्मभूमि भी है। देश से बढ़कर कोई धर्म नहीं, भारत से बढ़कर कोई कर्म नहीं।

वतन की मिट्टी में बसती है हमारी पहचान, भारत की शान पर है हमें अभिमान। दोस्तों, वतन की खास बात जानते हैं क्या है? देशभक्तों ने अपने महबूब से भी अधिक प्रिय जाना है अपने देश को, तभी तो महबूब की अदाएं भी उन्हें वतन की ही याद दिलाता है।

दोस्तों, देश सिर्फ सैनिकों की ही नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। इसके सम्मान और विकास में हर नागरिक की भागीदारी है। अनेकता में एकता इसकी बड़ी पहचान है। सत्य और अहिंसा हमेशा से भारत का गहना रही है।

देश की रक्षा केवल सीमा पर नहीं होती, हर नागरिक का कर्तव्य और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। देश हम सब का है, इसकी प्रगति और सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है।

0: দেশ রাগিনী। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

दोस्तों, डर 2 पल का होता है, निडरता जिंदगी भर रहती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और वैसा ही बनते हैं।

और अब श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेल जगत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप खेल खिलाड़ी और योग इस विषय पर ए एलंगो से ली गई भेंट वार्ता सुनेंगे।

0: खेल जगत के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज हम कुछ चर्चा करेंगे योग के बारे में। योग के संदर्भ में आप सभी परिचित हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से खेल और खिलाड़ियों को योग से मदद मिल सकती है, और योग करते समय कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलती कर जाते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री ए इलांगो, जो कि पेशे से अध्यापक हैं लेकिन साथ में ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं। इलांगो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: सभी को नमस्कार।
0: इलांगो जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि योग जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये हम सभी जानते हैं,
1: जी,
0: और आज ये बात सिद्ध हो चुकी है, सभी से मान चुके हैं।
1: सही बात है।
0: जहाँ तक खिलाड़ियों का सवाल है, तो उनके लिए योग किस तरह से उनकी मदद कर सकता है?
1: खिलाड़ियों के लिए तो योग करना बहुत ही कंपलसरी है, अनिवार्य है। जो भी योग करेंगे उनको अपना जो भी जो स्पोर्ट्स होएगा, कोई भी कबड्डी हो, क्रिकेट हो, खो खो हो या एथलेटिक्स हो, वो जिसमें संबंध है उनमें से अगर उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर उनको योग करना चाहिए। योग करने के बाद उनको भी मालूम होगा कि उनका पहले का स्टेज कौन सा था और अभी उनका लेवल कितना है और उनका मनोबल कितना बढ़ता है। ये सब जो है योग से ही मिलेगा उनको, और वो जितना योग करेंगे उसके हिसाब से उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा।
0: यानी जैसे कि स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अच्छा है, आपने मनोबल का जिक्र किया, तो मानसिक रूप से भी हम इससे सशक्त होते हैं, जो कि खेल और खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। शारीरिक सशक्तिकरण के साथ साथ एक मानसिक बल भी होना चाहिए ताकि वो अपने स्पोर्ट में आगे बढ़ सके। कुछ ऐसे खास योग हैं जो कि खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ज़्यादा फायदेमंद है?
1: कुछ कुछ योग तो ज़रूर है, कुछ योग है, कुछ प्राणायाम है जो खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाता है, और उसमें से मैं कुछ आसन के नाम आपको बताना चाहता हूँ। जैसा एक वीरभद्र आसन, शायद आप नाम सुना होगा लेकिन कैसा करना है तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी अगर आसन करना हो तो कृपया करके कोई इंस्ट्रक्टर का सामने बैठ के सीखने के बाद आप किसी को भी कुछ बताइए। वीरभद्र आसन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को एकदम मजबूत देता है और टांग का जो ताई मसल्स है इसमें भी बहुत
0: ताकत लाता है।
1: ताकत लाता है, और हाथ में भी जो है, हाथ में जो आपको जितना मसल्स है हाथ को भी एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब आसन इम्पोर्टेंट है। और एक आता है धनुरासन, भुजंगासन, शिशु आसन जो छोटे बच्चे जैसे सोते हैं उसी तरह, और शवासन, और भी बहुत सारे आसन है जिस आसन के कारण जो स्पोर्ट्स एथलेटिक्स है, जो खिलाड़ी है, उनके मनोबल बढ़ता है, उनका शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उनका जो लेवल है वो लेवल बढ़ाने में काम आता है
0: कंसंट्रेशन भी बढ़ाता
1: जी,
0: है।
1: कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये बताना चाहूँगा कि अगर प्राणायाम जो है उनका माइंड को एकदम कंसंट्रेशन में कर देगा।
0: और किसी भी खेल के लिए जब तक हम पूरी तरह से केंद्रित ना हो, तो उसमें अपना जो अच्छा प्रदर्शन है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, वो शायद ही दे पाए।
1: जरूर जरूर,
0: तो
1: ये तो
0: कुल
1: सही
0: मिलाकर
1: है।
0: इन बहुत सारे जो आसन आपने जिक्र किया, प्राणायाम तो खैर जानते ही हैं कि इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है, तो इससे खिलाड़ियों को एक अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1: जरूर
0: लेकिन इलांगो जी, देखिए, योग जैसे आपने कहा कि इंस्ट्रक्टर के सामने बैठकर एक बार करने के बाद ही उसे दूसरों को बताना और खुद करना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि या तो हम टीवी में देख लेते हैं या कहीं सुन लेते हैं, तो अपनी मर्जी से बहुत सारा जो आसन है वो करने लगते
1: जी,
0: हैं, तो इसमें बहुत सारी गलतियां भी खो जाती है।
1: हो जाते हैं।
0: तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि

0: योग करने का एक सही समय जो है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है।
1: जरूर जरूर, समय बहुत समय निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जब समय मिलता है उस समय करेंगे। योग करने का एक समय जो है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग, सवेरे सवेरे सो के उठिए और कोशिश करिए कि जो ब्रह्म मुहूर्त जो बोला जाता है, जो सूरज निकलने से कम डेढ़ डेढ़ से 2 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, उससे पहले उठ के फ्रेश होके उस बैठ जाएंगी। और पहले तो आपको बॉडी को एकदम रिलैक्स पोजीशन में लेके आना है, रिलैक्स करना है बॉडी को। और आप एकदम रिलैक्स होके बैठिए। पहले शुरू करेंगे आप थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे सांसों की गति को नॉर्मल कर देगा। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ नहीं, सिर्फ सांस को अंदर भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है। इस भस्त्रिका प्राणायाम से आपको बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ता है। जैसे जैसे आपको ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ेगा, आपका हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक जैसा बीमारी जो है वो कभी नहीं आएगा आपको। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्राणायाम है, जैसा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का अगर लाभ हम बोलेंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम ऐसा प्राणायाम जो आपकी शरीर को सिर से लेके पांव तक का सारा बीमारी को दूर कर सकता है।
0: तो ये योग के साथ साथ, जैसे आपने कहा कि पहला तो इसका समय जो है वो निश्चित है, मतलब सवेरे सवेरे अगर अर्ली
1: ब्रह्म
0: मॉर्निंग,
1: मुहूर्त बोलते
0: जी
1: हैं
0: हाँ अर्ली मॉर्निंग अगर इसे किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। तो
1: जी।
0: वो तो समय फिक्स है, जो लोग उसको नहीं पालन करते तो उतना जो फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इलांगू जी, आप काफ़ी अरसे से बच्चों को सिखाते हैं योग, क्या गलतियाँ आमतौर पर लोग करते हैं योग करते वक्त?
1: देखिए, जैसे कि एक आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन जो है, हाथ को जमीन पर रख के आप एकदम पलटी होकर लेट जाएंगे पेट के बल पे, और हाथ नीचे रख के सामने चेस्ट को ऊपर उठाना है। इसमें सांसों की गति पे ध्यान देंगे। देखिए, आप जब ऊपर उठेंगे तो सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, वहाँ पर रिलैक्स करेंगे, तो उस समय आपका सांस का स्थिति जो है नॉर्मल रहेगा। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आप जितने देर ऐसा रोक सकते हैं रोक के रखिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। लेकिन ये जब हम लोग सांसों की गति पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हमारे जो है कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है।
0: यानी इसमें जो भी आसन है उसमें सांसों की गति कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना ही बहुत ज़रूरी है।
1: जरूरी है। बहुत सारे जन जो है बहुत जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं और कोई वार्म अप कर लेते हैं अपने आप में, या कोई पार्क, हमने भी बहुत सारा जगह देखा, पार्क में भी देखा है और कोई सी बीच में भी देखा है, कि बहुत जन जो है वॉकिंग करते हैं उसके बाद आके अपना पूरा पूरा वार्म अप करते हैं, जितना पसीना निकाल सकते हैं निकालें। लेकिन अगर सांसों की गति पे ध्यान देते हुए अगर वो सब करेंगे तो उनको 100% बहुत जल्दी ही फायदा मिल जाएगा।
0: और इसमें जो कपड़े जैसा पहनते हैं,
1: जरूर जरूर, कपड़े जो है हम कभी भी एकदम ज़्यादा टाइट फिट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। आप ऐसा कपड़ा पहने कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, आप पैर को मोड़ के बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होना कि आप पैर मोड़ के बैठते हैं आपको थोड़ी ही देर में आपको पैर दर्द दे देता है, कपड़े के चलते आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो उस तरह कपड़ा कभी मत पहनिए कि जिससे आपको कंफर्टेबल फील ना करें। थोड़ा सा लूज़ कपड़ा पहनिए, ताकि आपको योग करते समय आपको मज़ा भी आएगा और कपड़े से आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी आसन हम करते हैं उसको उस स्टेज तक ही ले जाना चाहिए जब तक कि हम अपने आप को, जैसे आपने बताया, कंफर्टेबल फील करें। जहां हमें स्ट्रेस आता है या बहुत परेशानी होती है उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए।
1: हाँ, ये तो सही बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगल बगल में कोई कर रहा है तो उनका बॉडी जितना फ्लेक्सिबिलिटी है, ये नहीं बोल सकते कि हमारा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। तो अगल बगल वालों को देख के वो जितना करते हैं उतना हमें भी करना ज़रूरी नहीं है। आप उतने ही करिए आपकी जितना क्षमता है। कभी भी दूसरों को देखते हुए आप उतना बॉडी को ज़बरदस्ती मोड़ना तोड़ना नहीं।
0: तो इलांगो जी, आज आपसे बातें हुई और आपने योग के संदर्भ में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सभी को।

दोस्तों, अभी आप खेल जगत कार्यक्रम के तहत ए एलांगो से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। विषय था खेल, खिलाड़ी और योग। इनसे भेंट कर रहे थे शिव जॉर्ज। और अब दोस्तों, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का रुख करते हैं गीत संगीत की ओर।

0: दोस्तों, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें, तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 0112-9001701 पर।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: बदलो बदलो, आदत बदलो।
7: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
6: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो

0: सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब दोस्तों कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गाना, समीर के बोल हैं व नदीम श्रवण का संगीत।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में अभी आपने सुना दिल तो पागल है फिल्म का ये शीर्षक गीत। और इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव

0: नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला यह पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से यह हुर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हुर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल

रही के पढ़े के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी एक एक से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच एक एक से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई।

0: सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस, स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government

वो मेरी मोहब्बत का गुजरा ज़माना, नहीं मेरे बस में उसे भूल जाना। कह रहे हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर।

क्यों उसे तूने बस एक फूल कहा है मेरे दोस्त, तूने शायद मेरे महबूब को देखा ही नहीं। कार्यक्रम की अगली पेशकश अशोक खोसला की आवाज़ में।

रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो, आंखें सच बोलती है प्यार छुपाया ना करो। रेत पर लिख कर मेरा नाम मिटाया ना करो। गुलाम अली की आवाज़ में ये अगली पेशकश।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में पेश है सलमा आगा की आवाज़ में ये कलाम। ये माना कि तुमने हमको बहुत चाहा, मगर हम भी तुमको बहुत चाहते हैं। कभी मिलकर बिछड़े ना है ये तमन्ना, तेरे प्यार के इंतहा चाहते हैं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के समय 9 बजे हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं याराना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, अनजान के बोल हैं व राजेश रोशन का संगीत।

ज्वाला दहेज के इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में। अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में सती सावित्री फिल्म का ये गीत। भरत व्यास के बोल हैं व लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहे हमारे साथ।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
4: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्ते सुनीता, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
6: नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ।
2: बधाई हो, अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो।
6: ये कौन सा टीका है दीदी?
2: ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर।
6: टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई?
2: नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर कर लो।
6: धन्यवाद दीदी।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब श्रोताओं, लीजिए सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार राजेंद्र कृष्ण का लिखा व किशोर कुमार का गाया गीत, फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी शामिल कर रहे हैं जूली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन।

0: क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए।
1: और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए कुर्बानी फिल्म का ये गाना अमित कुमार, कंचन और साथियों की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं व कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आइए सुने कर्नाटक शैली में त्रिचुर वी रामचंद्रन का गायन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए राग सावेरी, जो आदिताल में निबद्ध है। कृति पापना सिवन की है, राग कमस।

शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आपने त्रिचुरवी रामचंद्रन का गाया राग सावेरी सुना, और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए इन्हीं का गाया राग कमस जो आदि ताल में निबद्ध है। कृति मैसूर वासुदेवाचार्य की है।

0: शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप कर्नाटक शैली में त्रिचुर वी रामचंद्रन का गायन सुन रहे थे।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओ, अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म लुका छिपी से, जिसे गाया है अखिल सचदेवा और ध्वनि भानुशाली ने। गीत लिखा कुणाल वर्मा ने तथा इस गीत को संगीतबद्ध किया अभिजीत वाघानी ने।

लुका छिपी फिल्म के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुने सलाखे फिल्म का ये नगमा श्वेता शेट्टी अभिजीत और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा समीर ने, धुन तैयार के दिलीप सेन समीर सेन ने।

संजय लीला भंसाली के संगीत निर्देशन में तैयार ये है सिद्धार्थ गरिमा के लिखे बोल, जिसे गाया है आदित्य नारायण ने। फिल्म का नाम है गोलियों की रासलीला रामलीला।

सोनू निगम के स्वर में ये था संघर्ष फिल्म का गीत, गीतकार तेज समीर व संगीतकार जतिन ललित। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ज्योति नौरा के स्वर में तनु वर्ड्स मनु रिटर्न्स फिल्म का ये गीत, गीत लिखा राजशेखर ने।

उदित नारायण के स्वर में श्रोताओं अब लीजिए सुनिए साया फिल्म का ये गीत, सईद कादरी खाली का गीत जिसकी तर्ज बनाई अनु मलिक ने।

0: अरिजीत सिंह के स्वर में ये था सनम तेरी कसम फिल्म का गीत। गीत लिखा शब्बीर अहमद ने तथा इस गीत की तर्ज बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: The boldest deal of the year is here. Nexa's premium hatchback, the bold Baleno, can be yours at just ₹4,999 per month. From head-up display, 6 airbags to 360 view camera and best-in-class interior space, it has everything you need in your ideal premium hatchback. Visit your nearest Nexa showroom to book now.
2: Avail benefits up to ₹53,000. Terms and conditions apply.
3: Nexa.
0: गीत गाता चल कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं सात रंग के सपने फिल्म का ये शीर्षक गीत अलका याग्निक और एम जी श्री कुमार की आवाजों में। गीत लिखा समीर ने।

शान और शाद अज़ीमा बादी की आवाज़ों में अब आपको सुनवा रहे हैं तहजीब फिल्म का ये गीत। ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में तैयार, गीत के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

कनिका कपूर और दीपांशु पंडित की आवाजों पे लीजिए सुनने NH10 फिल्म का ये गीत। संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में तैयार, गीत के बोल कुमार ने लिखे हैं।

कनिका कपूर और दीपांशु पंडित की आवाजों में अभी आपने NH-10 का फिल्म का ये गीत सुना। और अब कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तेरे नाम फिल्म का ये शीर्षक गीत। गीत लिखा समीर ने, इस गीत की धुन तैयार की हिमेश रेशमिया ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में श्रोताओं अभी आपने तेरे नाम फिल्म का ये शीर्षक गीत सुना। गीत लिखा समीर ने तथा इस गीत को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं पर समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: डंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा?

0: हमारा इस सप्ताह की चर्चा का।
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओ, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओ, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओ, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओ मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओ, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-4405-59। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
2: साथियों नमस्कार,

0: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
0: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
0: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को

0: झकझोरा और पूछा,
1: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
1: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।

0: बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉनसी, उस दिन क्या 100 थे जो अब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
1: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
2: Only 4.
1: मेरी तरफ देखो।
2: सू, only 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
2: 3 पत्तियां।
1: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
1: हाँ, हाँ।
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
1: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं। और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: हाँ
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओह जॉनसी।
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों,

0: जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया। पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल।
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ
2: हाँ,
3: मैंने देखा। मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो, कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओ गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पत्ते

0: क्षण में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉन्सी,
1: हम्म,
0: जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो, वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस।
0: हाँ।
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिर।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: श्रोताओ, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1300वीं साथ कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है इंतहा। राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

चमेली। आइए इस फिल्म से सुने सुनिधि चौहान के स्वर में एक गीत, इरशाद कामिल का लिखा गीत जिसकी तर्ज बनाई संदेश संदालिया ने।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में ये था इश फिल्म का गीत।
1: Drive smart, drive Maruti Suzuki Alto Caton, जिसमें है माइलेज ऑफ 24.90 किलोमीटर पर लीटर। Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags.

0: Jets. Next Gen K Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine or spacious interiors. Buy offers up to 60,500. Offers stock rehne tak hi.
1: Aaj hi visit kare apne nazdeeki Maruti dealership. Sharte lagu.
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में खुशी फिल्म का गीत, समीर का लिखा गीत जिसे संगीत बद्ध किया है अनु मलिक ने।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार ये है राहत इंदौरी के लिखे शब्द, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और विनोद राठौर ने। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS। श्रोताओ, ये है हमारे कार्यक्रम की अंतिम भेंट।

श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की आवाजों में ये था मुन्ना भाई MBBS फिल्म का गीत। और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। श्रोता लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओ, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओ, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा

21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये क्या के हुक्म भी करना तो इल्तिजा की तरह। आइए सुनिए एक और खूबसूरत गजल गुलाम अली की आवाज़ में।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके नाम फिल्मी पैगाम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेरी यादों का नगमा यूं गुनगुनाते रहे, हर पल तुझे अपने दिल के करीब पाते रहे। वक्त बदलता रहा, मौसम भी बदल गए, मगर हम तेरे प्यार के नगमे सुनाते रहे। इन सुंदर पंक्तियों के साथ कर रहे हैं आज के कार्यक्रम का आगाज और लेते हैं कार्यक्रम का पहला मैसेज जो कि हमें भेजा है। नलेश्वर नगर नाखेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर ने ये सुनना चाहते हैं, एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

का ये गीत अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा के स्वरों में, जिसे सुनने के इच्छुक मंद श्रोता हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया।

बेटा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं पद्मावत फिल्म का ये जोशे भरा गीत शैल हडा और शिवम पाठक की आवाज़ों में, जिसे सुनने के लिए हमें मैसेज भेजा है गैरा चरमा श्री विजयपुरम से विनायक कृष्णा और ललित ने।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम, जहां पर श्रोताओं के मैसेज पर भेजे गए गीतों को हम सुनवाते हैं। और अब कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता हैं वड़िंगखेड़ा पंजाब से, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। ये हमारी पसंद पर कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं तो हमें हमारे इन श्रोताओं को ज़रूर एक प्यारा सा गीत सुनाएंगे। ये हमारे श्रोता हैं मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती, अरोरा। तो चलिए श्रोताओं, आपको हम सुनवाते हैं अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में यस बॉस फिल्म का ये नगमा।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी संदेश, जो हमें भेजा है टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका थांदी ने। ये सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में कसूर फिल्म का ये गीत।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में बस इतना ही। हमारे नियमित श्रोताओं को ढेरों गीतों की फरमाइश भेजने के लिए धन्यवाद। और हमारे जो नए श्रोता जो आज ही हमसे अगर जुड़े होंगे, तो उन्हें हम बता दें कि आप किस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल की इनबॉक्स में जाकर टाइप करें फिल्म का नाम, गाने के बोल और अपना नाम और पता लिखकर हमें भेज दें फ़ोन नंबर 9474234000 पर। नंबर एक बार फिर दोहरा दें 9474234000। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपनी रेडियो सखी हेमलता को इजाज़त। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओ, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार। दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज़ और दोपहर 2:15 पर दोपहर समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month ahead of any ETUG retest. Message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from centre and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस

0: तरह से सहायक हो सकता है।
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले

0: ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
2: UNSC reform would be grossly inadequate.
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्यभर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में जन सेवाओं को यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही बिजली चमकने व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से हवा की गति रहने की भी आशंका व्यक्त की गई है। जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में यह बताया गया है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में हवा की गति 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिसके कारण समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि वे 17 जून तक समुद्र में न जाए। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32:22 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब श्रोताओ, अब आपके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: श्रोताओ, अभी आप नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम में गुरु, बर्फी, हाउसफुल टू, गैंगस्टर, फूल और अंगारे, करीब, लकी, युवराज, किक, डिस्को डांसर और रेस टू के गानों का आपने आनंद लिया।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। और अब श्रोताओं, आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म संगीत की उस महान शख्सियत को जिन्होंने अपनी मखमली आवाज़ और मधुर धुनों से संगीत प्रेमियों के दिलों में एक अमिट स्थान बनाया। जी हाँ, आज जन्मदिन है सुप्रसिद्ध गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार का।

गीतों की सौगात दी। दोस्तों, उनकी आवाज़ में सुकून था, गहराई थी और भावनाओं की ऐसी मिठास थी जो आज भी उतनी ही ताज़ा महसूस होती है।

हेमंत कुमार एक ऐसे कलाकार जिन्होंने न केवल अपनी गायकी से लाखों श्रोताओं का मन मोह लिया, बल्कि संगीतकार के रूप में भी हिंदी और बांग्ला सिनेमा को अनेक कालजयी

दोस्तों, 16 जून 1920 को वाराणसी में जन्मे हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने भारतीय संगीत जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। बांग्ला संगीत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले हेमंत कुमार ने धीरे धीरे हिंदी फिल्म संगीत में भी वो मुकाम हासिल किया जिसे हर कलाकार पाने का सपना देखता है। उनकी आवाज़ में एक अनोखी गहराई और आत्मीयता थी जो श्रोताओं को सीधे गीत की भावनाओं से जोड़ देती थी।

दोस्तों, 50 और 60 के दशक में जब हिंदी फिल्म संगीत अपने स्वर्णिम दौर में था, तब हेमंत कुमार ने गायक और संगीतकार दोनों रूपों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिल्लामनिन्यी रोखरा हमांग इंगरे थाका लामक तेलंगी मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हे 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरमनी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनकातलुन ही इंगलहरा हवे कनु एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स नेगम एडमिशन इनगम द्रोल कांगन डिप्लोमा अंडर गम MSPTE डिग्री अंडर NSCPIHL यूनिवर्सिटी हे गम लेटरल एंट्री इंट्रे इनगम डिप्लोमा इंजीनियरिंग हे डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स कायतंगम डॉक्टर बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी डिप्रेट श्री विजयपुरम इंगम डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर्ड गम कॉमन

0: Tikak nyu Samuel Andrew ahanyo nyuntahi mini ta asuniren ha anghi tin kek. Hoi hangatir ng haang in nga cinta mu hek in huruj hangrong ita kasata ita fan kan ro tala harap ngayen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह।

इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। श्रोताओं अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 बजे तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें आप खेत बचाओ अभियान पर श्री जगदीश हल्दर से की गई बातचीत सुनेंगे। संध्या 6 बजे आनंद लीजिए कार्यक्रम शामी बहार का, मौसम की जानकारी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे। संध्या 7:15 पर, संध्या 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीत। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30, जिसमें श्रोता सुनेंगे देशगान कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग समय रहेगा रात्रि 8 बजे। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30। तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम।

और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर, 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना, 5:55 पर सुनिए एग्री टिप्स, विषय रहेगा पान पत्ती की काश्त। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर, 6:15 पर सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम, विषय रहेगा अरमान। रामचरित मानस गान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 6:30, 6:40 पर सुनिए वतन के गीत, 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30 जिसमें आप साहित्य, वहीं विविध भारती FM पर आप सुनेंगे साहित्य दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत कवित्री डॉक्टर एन लक्ष्मी की स्वरचित कविता सुन पाएंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30, कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह, पंकज उदास, गुलाम अली। सवेरे 9:00 आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर सुनिए पंडित मनी प्रसाद का हिंदुस्तानी शैली में गायन। सवेरे 10:00 सुनिए कार्यक्रम गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1308वीं कड़ी आप सुनेंगे दिन के 11:00। दिन के 11:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। बारह बजे तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30, 1:10 पर सुनिए महफिले कव्वाली कार्यक्रम। कव्वाल होंगे तस्लीन आरिफ और टीना परवीन। और दोपहर 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, वहीं 2:30 पर प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि 100.9 MHz विविध भारती श्री विजयपुरम पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे। श्रोताओं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 11वीं कड़ी। कार्यक्रमों के विवरण से आपको अवगत करवाएंगे 4:40 पर। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का आनंद लीजिए 4:45 पर। 5:00 तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। 6:00 सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम दर्द भरे नगमे। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। मौसम की जानकारी जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे 7:15 पर। 7:30 पर सुनिए युवाणी कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम और रात्रि 10:00 आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सरगम का। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है जिसका प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे। ये तो थे हमारे आज की सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फरेब से कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल की आवाजों में। सैयद कादरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोताओं बहारों की शाम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम वणक्कम नेयर्गले।

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार। किसानवाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा की तरह आज के इस अंक की शुरुआत भी हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। हमारा आज का जो विचार है वो इस प्रकार है, आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से भर सकते हैं ये जीवन की सच्चाई, सफलता और दृष्टिकोण को सुधारने वाले अनमोल वचन होते हैं जो मन को शांति और दिशा प्रदान करते हैं। साथियों, जब मन में शांति हो तो हर कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। साथियों, हम बात कर रहे हैं योग के बारे में। योग हमारे शरीर को बहुत ही लाभ पहुंचाता है। साथियों, इस बात से आप सहमत भी होंगे, आज हर घर में योग का प्रचलन चल चुका है। साथियों, इसके लाभ भी बहुत होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर को लचीला बनाता है और मांसपेशियां मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इससे मानसिक शांति, तनाव, चिंता और अवसाद दूर होते हैं। यह केंद्रित करने के लिए भी मानसिक स्पष्टता में सुधार करता है। हम आपको ये भी बता दें कि ये बीमारियों से भी बचाव करता है, जैसे मधुमेह हुआ, हृदय रोग हुआ, पाचन संबंधी समस्याओं के नियंत्रण में भी योग जो है काफ़ी मददगार साबित हुआ है। साथियों, योग को दिनचर्या में शामिल करने से जीवन ऊर्जावान, रोग मुक्त और आनंदित बनता है। साथियों, योग पारंपरिक रूप से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन और मन और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रक्रिया ही है और योग हर किसी को करना चाहिए, चाहे बच्चे हो या बूढ़े। इससे हमारे खुद के शरीर को ही फायदा पहुँचता है। साथियों, ये तो थी कुछ बात।

0: योग के बारे में।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: अब आइए कार्यक्रम में हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आपको बताना है कि बुवाई के लिए रजनीगंधा के कंदों का वजन कितना होना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर सुने, बुवाई के लिए रजनीगंधा के कंदों का वजन कितना होना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों खेत बचाओ अभियान चल रहा है, और हमारे जो दूर दराज के किसान साथी हैं वो भी इस अभियान से जुड़े हैं, इस अभियान से लाभ उठा रहे हैं। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात नमूना घर के रहने वाले एक प्रगतिशील कृषक श्री जगदीश हलदार जी से करवाने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अरसे से खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और हर क्षेत्र में वो कार्य करते हैं, और हमेशा वे तत्पर होते हैं कि अपने तमाम किसान साथियों से अपनी बातें साझा कर सके। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और सुनते हैं ये बातचीत। जगदीश हलदार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बताइए जगदीश हलदार जी, खेतीबाड़ी से काफी अरसे से आप जुड़े हुए हैं और खेतीबाड़ी का काम करते आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को?
4: हमारे भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे पुरखों भी किसान काम से ही जुड़े हुए हैं
0: जी।
4: तो ये किसान के जैसे काम करना, ये हमारा एक जीवन शैली बना हुआ है, और ये किसान का काम करना हमारा सौभाग्य है कि हम एक किसान है। क्योंकि देखिए, समाज में कोई भी काम छोटा नहीं होता,
0: किसान तो, देश का अन्नदाता है।
4: जी जी
0: बिल्कुल।
4: तो मुझे गर्व है कि मैं उसी किसान ग्रुप में, मेरा नाम है।
0: जी जी।
4: तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, गर्व है कि मैं किसान हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए जगदीश हलदार जी, खेती बाड़ी में अब आप क्या लगा रखे हैं? अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है।
4: जी, अभी फिलहाल हमारा बागवानी का काम चल रहा है
0: जी,
4: और उसके साथ में फूलों का खेतीबाड़ी चलता है। एक हमारे अंडमान का एक अलग पहचान हो, उस दिशा में हम थोड़ा कार्यरत हैं। पहले भी आपके कार्यक्रमों का माध्यम में आपके साथ बातचीत हुआ था
0: जी।
4: एक फूल है जो हेलिकोनिया है, जो जिसका बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जो यहाँ से निर्यात हो सकता है, और हमारे यहाँ का जो किसान तबके हैं उसका माली हालात को ठीक कर सकता है। क्योंकि ये फूल प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ में उगता है, और जो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है, लो कॉस्ट का है, प्राकृतिक रूप से ही उग जाता है, जिसमें खाद पानी दवा का प्रयोजन नहीं होता, ज़रूरत नहीं होता, और अच्छा से उगता है, और इसका डिमांड भी बहुत अधिक है। हालांकि इतना प्रचलन हमारे द्वीप में नहीं है, पर बाहर के लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और डिमांड है पूरा दुनिया भर में। अभी फ़िलहाल दुनिया भर में मलेशिया और थाईलैंड से इसका पूरा किया जाता, लेकिन वो भी जितना ज़रूरत है उसका पूरा नहीं होता। हमारे भारत में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हम यहाँ से निर्यात नहीं कर पा रहे, और जो भारत के कुछ तमिलनाडु और केरला का एरिया में थोड़ा अच्छा से होता तो वहाँ उससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ होता है
0: जी।
4: पर उन लोग जितना मेनलैंड में उगाते वो वहाँ का क्वांटिटी को पूरा नहीं कर पा रहे।
0: अच्छा।
4: अभी प्रशासन की तरफ से थोड़े दिन पहले बायर्स मीटिंग अरेंज किया था यहाँ में, तो वहाँ बहुत सारा बायर्स लोग आए थे, जिसमें फूलों का बायर्स तो कम थे, लेकिन जो अंडमान

0: प्रोडक्ट का बायर्स बोल के आए थे तो उन लोग काफ़ी पसंद करें, और उन लोगों ने ये बताया था कि दिल्ली और कोलकाता और जितने भी महानगर हैं हमारे चेन्नई और बेंगलोर में, वहाँ में इस फूलों का प्रचलन है, काफ़ी दाम भी मिलता है। और इस फूलों के बारे में आपको बताना कि ये कट फ्लावर सेक्टर में आता है, और ये इसका बिना पानी में रखने से भी सप्ताह भर में इसमें सेल्फ लाइफ है, ना मुरझाता है ना
1: सूखता
0: इसका
1: है।
0: रंग जाता है।
1: अच्छा
0: तो ये हमारा अंडमान का एक नाम रोशन कर सकता है, और यहाँ का जो एक अच्छा प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से जा सकता है, और हमारे किसानों को भी इसका काफ़ी फायदा मिल
1: मिल
0: सकता है।
1: सकता है। जगदीश
0: हाँ,
1: हलदार जी, निर्यात क्यों नहीं हो रहा है, वजह क्या है, कमी कहाँ
0: निर्यात
1: है?
0: इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम मुख्य भूमि से काफ़ी दूर में हैं, और यहाँ से ये जो कच्चा माल है इसको शिप में हम लोग नहीं भेज सकते,
1: अच्छा
0: इसको जाना तो फ्लाइट में जाना है, और फ्लाइट में जाने से उसमें जो खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, जो बायर्स हैं उनको ज़्यादा अगर क्वांटिटी में मिलेगा तो वो खर्चा को एडजस्ट कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: थोड़ा अगर हम बेचते हैं तो उनको पुसाएगा नहीं है खर्चा में, तो इसलिए उन लोग बोलते कि तैयार तो है खरीदने के लिए, 3 बायर्स है खरीदने के लिए, लेकिन डेली 3 को कम से कम 1,000 फूल चाहिए। मैं जितना एरिया में लगाया हूँ और उतने ही बिडनाबाद में और एक किसान भी लगाए हैं,
1: जी,
0: तो अगर वो दोनों हम लोग भी करने से दोनों मिलके भी एक दिन में 1,000 फूल नहीं भेज सकता। अगर ज़्यादा किसान इसमें आए और ये फूलों का उत्पादन ज़्यादा कर पाए तो
1: जी
0: बायर्स तो खरीदने के लिए तैयार है, लेने के लिए भी तैयार है, तो दाम भी देने के लिए उन लोग तैयार है।
1: किसानों के लिए इस बारे में कोई जागरूकता कार्यक्रम कभी आयोजित नहीं किए, या
0: होता
1: आपको
0: है
1: लगता है?
0: पर यहाँ का किसान जो है फूलों के बारे में उतना अवेयर नहीं है, उनको
1: जी
0: इतना
1: जी जी
0: जागरूकता नहीं है,
1: जी
0: उन लोग फूलों के बारे में सोचते कि फूल से यार कितना ये होगा। इसका बारे में मुझे भी इतना जानकारी नहीं था, लेकिन एक फ्लावर कॉन्फ्रेंस था जिसमें मेनलैंड से कुछ बायर्स आए थे, उन लोग अंडमान में जो थोड़े मोटे फूलों का दुकान है उसमें से डाटा कलेक्ट करके उन्होंने जो डाटा बताया था कि 1 साल में अंडमान में सिर्फ पोर्टलर शहर में ही, बाकी दूसरे जो आइलैंड में तो फूलों का उतना व्यवसाय नहीं है,
1: जी
0: लेकिन फिर भी यहाँ में जो कुछ 8-10 दुकानें हैं उनसे डाटा इकट्ठा करके उन्होंने बताया था कि 10 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस होता है फूलों का, और जिसमें 1% भी अंडमान का उत्पादन नहीं है। तो आप बताइए जो मेनलैंड से वहाँ से आयात करके यहाँ में इसका इतना बिजनेस हो सकता है, तो हाँ यहाँ उत्पादन करने से और ज़्यादा हो सकता है, और
1: ज्यादा हो
0: यहाँ से
1: सकता।
0: इसका निर्यात का भी संभावनाएं हैं,
1: जी जी
0: लोग खरीदने के लिए तैयार है, और ये बहुत अच्छा से उगता है, इसका कलर, इसका डिज़ाइन और इसका जो रंग रूप है वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है, और बहुत ज़्यादा खुशी का बात है कि इसका सेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है,
1: अच्छा
0: और भी ज़्यादा ये बात है कि किसान लोगों को इसको उगाने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा खर्चीला नहीं है क्योंकि ना कीड़ा मकोड़ा लगता है ना इसमें खाद पानी का ज़्यादा आवश्यकता है, तो ये बहुत अच्छा से उगता है,
1: फिर
0: और
1: भी हमारे किसान नहीं उगा रहे हैं।
0: क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत
1: बिल्कुल
0: है, और एक बात है इसके लिए अलग से जगह लेके करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी बागवानी करने वाले किसान हैं वो अपने नारियल सुपारी के जो बागान का बीच में ही कर सकते हैं वो, क्योंकि ये पार्शियल शेड में अच्छा से हो जाता है। और एक बात है कि हमारे किसान भाइयों को पता है, आपको भी पता होगा कि जो नारियल और सुपारी को उसका बगान का नमी बनाए रखने के लिए हम लोग केला पेड़ लगाते थे,
1: जी
0: तो उसमें नमी बरकरार रहे इसलिए, लेकिन ये जो केला प्रजाति के ही पौधे हैं और इसको लगाने से भी मैं अपना बगान में देखा हूँ वो नमी को बनाने के लिए केला से भी ज़्यादा सहायक है,
1: अच्छा
0: अगर इसको लगाते हैं एक तो हमारा बगान में भी अच्छा हो जाएगा, इसमें नमी भी बना रहेगा और आमदनी भी आ जाएगा। तो ये बोलता हूँ कि नारियल और जो सुपारी जाता है अगर हम किसान लोग अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये उससे भी ज़्यादा फायदा दे सकता है, क्योंकि नारियल सुपारी जो है वो महीने में 3 महीना में इस तरह आता है, ये इधर डेली उगने वाला
1: डेली
0: है,
1: उगने वाला है।
0: अगर धूप के समय भी हो सकता है कि धूप के समय में हमारे यहाँ में थोड़ा पानी का सिंचाई का बंदोबस्त करना,
1: जी,
0: तो उस समय भी ये अच्छा से उग जाएगा और उस समय भी हम लोग भेज सकते हैं।
1: लेकिन गिने चुने किसान ही कर रहे
0: हाँ
1: हैं।
0: कि और थोड़ा इक्का दुक्का और दो चार किसानों के पास में है।
1: देखिए जगदीश हलदार जी, कृषि विभाग भी किसानों की

0: मदद कर रहा है, और बस ज़रूरत है कि कुछ किसानों को आगे आने की, अगर मिलजुल कर करेंगे हो सकता है इसका भी व्यवसाय अच्छी तरह से किसान कर सकते हैं।
1: जी
0: अब हम बात करते हैं खेत बचाओ अभियान पर। जैसा कि आप सुने होंगे कि 1 जून से 30 जून तक इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है, और दक्षिण अंडमान में तो कॉलिनपुर नमुनगर गांव में 1 जून को इसके लिए किसानों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
1: असल में हमारा जो प्रशासन है इसको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
0: जी
1: उन्होंने एक इस तरह का पहल किया है कि खेत बचाओ आंदोलन। असल में अभी ऐसा है कि किसानों का जो काम में है इसमें जो पुराने किसान लोग हैं उन लोगों के बाद में अगर ठीक से अभी अवेयर नहीं किया गया तो एक समय आएगा तो अंडमान में जो कोई किसान काम में रुचि रखेगा नहीं, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो ज़्यादातर जिनके पास ज़मीन है बाग है वो उसमें से सबका उबना शुरू हो गया। उनके जो घर के जो बच्चे हैं
0: जी
1: वो जो पढ़ लिखने के बाद में सिर्फ नौकरी के तलाश में रहते हैं और दूसरा कुछ काम करना चाहते हैं, किसान काम में उनका रुचि कम दिखाई दे रहा है। और उसका भी वजह यह है कि उसमें उतना आमदनी नहीं दिखता है उनको, और जो मॉडर्न तरीके से जो किसान का काम करने से उसमें बहुत ज़्यादा आमदनी है। ये आए दिन हम लोग जो बहुत सारा यूट्यूब में आता है, फेसबुक में आता है, फिर न्यूज़पेपर्स का आर्टिकल्स में आता है, देखने को मिलता है जो बहुत सारा लोग जो NRI थे और जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में फॉरेन में जाके काम करते थे उन लोग वापस आ रहे हैं, वापस आके अपने घर में अपने खेतों
0: खेतों
1: में
0: को संभाल।
1: परंपरागत तरीके से उन लोग किसान का काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि उन लोग जो है जो पहले उनके पूर्वजों ने करके आए वही नहीं कर रहे हैं, बल्कि नया तरीका में जो मार्केट में डिमांड है उसके अनुसार खेत कर रहे हैं, और उन लोग महीने में लाखों नहीं करोड़ों का आमदनी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: वो सारे जो जागरूकताएं हमारे किसान परिवारों में लेके आना है और जो नए बच्चे हैं उनके अंदर लेके जाना है, तभी जागरूकता जो हमारे
0: खेत
1: किसान
0: बचाओ
1: खेत
0: अभियान।
1: बचाओ
0: जी
1: असल में खेत बचाओ नहीं किसान बचाओ
0: किस
1: आंदोलन
0: ओके
1: होना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि किसानों का आगे लेके जाने वाला आंदोलन
0: यानी कि
1: होना
0: नई
1: चाहिए।
0: तकनीकों का इस्तेमाल करके
1: जी
0: जो है बच्चे अगर रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं,
1: नहीं
0: अपनी
1: करें।
0: भूमि को और अच्छी तरह बना
1: जी
0: सकते हैं,
1: जी
0: बढ़ा सकते हैं, मतलब
1: जी
0: इस अभियान के तहत यही बताया जा रहा है किसानों
1: जी
0: को कि अच्छी आमदनी के लिए वैज्ञानिकों से भी संपर्क करें,
1: जी
0: अपने जो भूमि है उसमें उनका जो मृदा है जो मिट्टी है उसको सही रखें और
1: जी
0: उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, तभी आपको अच्छा फायदा होगा।
1: बिल्कुल। मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर में मेरा नाम है, मैं इसमें बहुत खुशी से काम भी करता हूँ
0: जी
1: और
0: जी
1: कुछ आमदनी भी होता है, लेकिन एक सच्चाई भी बताना चाहता हूँ, जितना मुझे ज़रूरत है मेरा परिवार पालने के लिए उतना आमदनी मेरा बगान नहीं दे पाता, क्योंकि हमारा जो खेत है सुनामी में नष्ट हो गया
0: नष्ट हो गया
1: था
0: था जी
1: और वो आज भी पानी भरा हुआ रहता है, तो उसमें उतना आमदनी हम लोग नहीं कर पाते हैं, और बगान में भी हम लोग उतना आमदनी कर नहीं पाते। उसका भी और एक रीज़न ये है कि हमारे जो यहाँ का ज़मीन सीमित है और हम लोग परिवारों में संख्या बढ़ गए,
0: जी
1: पहले
0: जी
1: हमारे पिताजी का एक ही हिस्सा होता था, अभी भाई लोगों का हो गया तो उनका हिस्से हो गया, तो हिस्से में ज़मीन कम
0: जमीन
1: पड़
0: कम पड़
1: गया
0: गया।
1: और उसमें आमदनी कम होने लगा
0: जी
1: दी,
0: जी
1: तो उसके लिए हम लोगों को बाहर काम करना पड़ता। मैं भी एक प्राइवेट फार्म में काम करता हूँ, उसके साथ में मैं किसान का काम भी करता हूँ, इससे मेरा एक्स्ट्रा आमदनी भी होता है। इसी तरह हर कोई भी कर सकता है, और हमको अभी सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जो पूर्वज जो करते हैं जो धान चावल और जो सब्जी उगाते थे उससे थोड़ा हटके हमको करना है, जो मार्केट में डिमांड है
0: बिल्कुल
1: उसके अनुसार हमको करना है, उसके अनुसार करने से हम ज़रूर इससे लाभान्वित हो सकते हैं और मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ।
0: बिल्कुल
1: तो जो जो भी किसान अगर चाहते हैं कि वो भी हमारे जैसा लाभान्वित होना चाहते हैं, अपने जो समय का सदुपयोग करके अपने जो बागान है, और बागान में ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी ज़मीन हमारे पास है उसको पूरी तरह उपयोग करना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा किसान वो ज़मीन को हम लोग ठीक से उपयोग नहीं करते हैं, कुछ
0: जी
1: कुछ हिस्सा रह जाता है, हमको अभी मिश्रित खेती करने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल
1: अगर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हम रहेंगे तो अगर भगवान ना करे उसमें अगर कोई आपदा आ गया वो
0: जी
1: नष्ट हो गया तो हम एकदम नुकसान उठा लेते हैं। अगर वही जगह में हम मिश्रित

0: कर रहे हैं, दो तीन चार हमारा आइटम हो, तो एक में नुकसान होगा तो दूसरे से
1: दूसरे
0: उसका
1: से
0: भरपाई हो
1: भरपाई
0: सकता
1: हो
0: है,
1: सकेगा,
0: तो हमको ऐसा करने की आवश्यकता
1: आवश्यकता
0: है।
1: है।
0: और मैं अभी आपके माध्यम से हमारे प्रशासन से यह आह्वान करना चाहता हूँ
1: जी
0: कि हमारे जो कृषि विभाग है और साथ में इनके साथ में जुड़े हुए जितने भी विभाग है, जैसे नाबार्ड बैंक है, जैसे हमारे केंद्रीय कृषि अनुसंधान
1: अनुसंधान
0: संस्थान
1: संस्थान
0: है,
1: है
0: कृषि विज्ञान केंद्र है, इन सब का एक जॉइंट सपोर्ट से हर जगह में एक अवेयरनेस कैंप होना चाहिए हर गांव-गांव में। और जो हमारे अंडमान में अच्छा उगता, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, किसान इससे आमदनी कर सकते हैं,
1: जी।
0: ऐसे कार्यक्रम करना, इससे कार्यक्रम का जानकारी देना। जो अभी बहुत सारा लोग बेरोजगार है, घर घर में, अब भी हर घर में एक चीज़ देखने के लिए है कि हर घर में बीमारी है और बेरोजगारी है, लोग पढ़ के बैठे हैं, और वो बच्चे हैं, वो किसान काम में उनको इंटरेस्ट नहीं है,
1: जी
0: उससे आमदनी हो सकते हैं इसका उनको जानकारी भी नहीं है, किसान घर के ही बच्चे हैं। तो उनको ये बताना है, भाई आप इस तरह कार्यक्रम करो, मेनलैंड में।

0: कार्यक्रम का जानकारी देना, जो अभी बहुत सारा लोग बेरोजगार है घर घर में। अब भी हर घर में एक चीज़ देखने के लिए है कि हर घर में बीमारी है और बेरोजगारी है, लोग पढ़ के बैठे हैं, और वो बच्चे हैं वो किसान काम में उनको इंटरेस्ट नहीं है,
1: जी
0: उससे आमदनी हो सकते हैं इसका उनको जानकारी भी नहीं है, किसान घर के ही बच्चे हैं। तो उनको ये बताना है भाई आप इस तरह कार्यक्रम करो, मेनलैंड में फॉरेन में जाके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो कंपनी के लोग, बड़े बड़े जो इंजीनियर्स और जो डॉक्टर्स हैं, उन लोग अपना वो काम फॉरेन से छोड़ के आके अपने खेत में, घर के पूर्वजों में आके वो जो खेती बाड़ी करके अभी लाखों में नहीं करोड़ों में कमाते हैं, तो हम अपना घर जरूर चला सकते हैं इस काम करके,
1: बिल्कुल
0: और हम बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयड लोगों का बीच में एक अवेयरनेस कैंप लेके आना हमारे विभाग की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से, तो हम अंडमान का नाम जरूर रोशन कर सकते हैं। बहुत सारा जो खाली जगह पड़ा है इसका हम लोग उपयोग करके हम किसानों का जो माली हालत ठीक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही जगदीश हलदार जी। कृषि विभाग से भी आपने गुहार लगाई, तमाम कृषक भाइयों की तरफ से आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें तमाम किसान साथियों के साथ साझा की। उम्मीद करते हैं कि आपका ये संदेश हर गांव हर घर तक पहुंचेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
0: थैंक यू मैडम जी, धन्यवाद।
1: खेत बचाओ अभियान, किसान साथियों अभी आपने इस विषय पर नमूना घर के रहने वाले कृषक श्री जगदीश हलदार जी के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जो जो बातें उन्होंने आपको बताई उससे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे।

गीत संगीत की दुनिया से बाहर आते हैं और आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर आपको बता देते हैं। भाइयों, हमने आपसे पूछा था कि बुवाई के लिए रजनीगंधा के कंदों का वजन कितना होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 से 40 ग्राम वजन के कंद बुवाई के लिए उपयुक्त होते हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: श्रोताओं, अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम शामी बहार। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म हाथ की सफाई का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार श्रोताओं सुनिए फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, आवाजें हैं किशोर कुमार व साथियों की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में श्रोताओं आपने सुना धर्मवीर फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामी बहार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रही हैं आंखें फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शाहिर के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है रवि ने।

0: कभी कभी।
1: और कार्यक्रम के अंत में सुनिए जावेद अख्तर का लिखा व आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म सागर का ये गीत आशा भोसले व एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में।

सागर फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामी बहार अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, अब एक नज़र हमारे कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना।

5:55 पर सुनिए एग्री टिप्स। विषय रहेगा पान पत्ती की काश्त। जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर।

सवेरे 6:15 पर सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम, विषय रहेगा अरमान। रामचरित मानस गान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 6:30। सवेरे 6:40 पर सुनिए वतन के गीत। सवेरे 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागनी। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30, जिसमें आप साहित्य दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत कवित्री डॉक्टर एन लक्ष्मी की स्वरचित कविता सुनेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30। कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह, पंकज उदास, गुलाब।

0: العملي. सवेरे 9 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर सुनिए पंडित मणि प्रसाद का हिंदुस्तानी शैली में गायन। सवेरे 10 बजे सुनिए कार्यक्रम गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1308वीं कड़ी आप सुनेंगे दिन के 11 बजे। दिन के 11:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। आप थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भारत और स्लोवाकिया की मित्रता का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने सम्मान को भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया। मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार स्पाइस प्रवाह 2.0 के अंतर्गत मसाला फसलों के पौधरोपण कार्यक्रम का कल शुभारंभ करेंगे। सांसद विष्णुपद रे ने 127 करोड़ रुपए की विकास निधि सरेंडर होने पर चिंता व्यक्त की। कैपिटल हेड बजट में आवंटित धनराशि खर्च न होने पर सांसद ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। और मत्स्य निदेशालय द्वारा 2026-27 के लिए अनिवार्य मत्स्य पालन योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू। मछुआरों को मत्स्य सामग्री पर 50 से 75% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रेनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ नागरिकों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के बीच विश्वास, स्नेह और सहयोग का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। कृषि विभाग द्वारा कल स्पाइस प्रवाह 2.0 के तहत मसाला फसलों के व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसी अवसर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म ब्लूम्सडेल छोलदारी में सुबह 9 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर द्वीप समूह के मुख्य सचिव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और सांकेतिक रूप से पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना

देना, कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना तथा किसानों को आधुनिक कृषि सुविधाओं से जोड़ना है। आरकेवीवाई के तहत स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को कृषि यंत्रों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा, जिससे खेती की लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में किसानों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की ओर से कल शाम 5:30 बजे से लाइव फोन इन कार्यक्रम पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय पशुपालन के माध्यम से आजीविका अर्जन रखा गया है। इस कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, पशु रोग निदान प्रयोगशाला एवं पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागनाथ मार्तंड भोज ने विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। वे पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, डेयरी एवं अन्य पशुधन आधारित आजीविका से जुड़े विषयों पर दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देंगे। दर्शक कार्यक्रम के दौरान फोन नंबर 2456662 अथवा 2447445 डायल कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, सांसद और अनिवार्य मत्स्य पालन योजना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा कैपिटल हेड के अंतर्गत लगभग 127 करोड़ रुपए की विकास निधि उपयोग न कर सरेंडर किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जिम्मेदारी तय करने और मामले की व्यापक समीक्षा कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लगभग 555 करोड़ रुपए के पूंजीगत बजट में से बड़ी राशि खर्च नहीं हो सकी और अंततः वापस करनी पड़ी। उनके अनुसार अंडमान लोक निर्माण विभाग ने 36.84 करोड़ रुपए, शिपिंग विभाग ने 20 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग ने 19.43 करोड़ रुपए, आपदा प्रबंधन विभाग ने 12.81 करोड़ रुपए, राज्य परिवहन सेवा ने 9.11 करोड़ रुपए, विद्युत विभाग ने 7.21 करोड़ रुपए तथा शिक्षा विभाग ने 4.59 करोड़ रुपए सरेंडर किए। पिछले 5 वर्षों में प्रशासन द्वारा यूटी कैपिटल हेड के तहत लगभग 705 करोड़ रुपए तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए यानी कुल 908 करोड़ रुपए की राशि उपयोग नहीं हो सकी। मत्स्य निदेशालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश योजना के अंतर्गत अनिवार्य मत्स्य पालन योजना के तहत द्वीप समूह के बोनोफाइड मछुआरों को आवश्यक मत्स्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2026-27 के लिए पात्र मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत गैर जनजातीय श्रेणी के मछुआरों को मत्स्य सामग्री की इकाई लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। इसमें गैर मशीनीकृत नौकाओं के लिए अधिकतम 1500 रुपये तथा मशीनीकृत नौकाओं के लिए अधिकतम 3000 रुपये की सब्सिडी निर्धारित की गई है। वहीं जनजातीय श्रेणी के लाभार्थियों को इकाई लागत का 75% अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा गैर मशीनीकृत नौकाओं के लिए 2200 रुपये तथा मशीनीकृत नौकाओं के लिए 4300 रुपये तय की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बोनोफाइड मछुआरा अथवा जनजातीय समुदाय का सदस्य होना आवश्यक है। उसके पास पंजीकृत मशीनीकृत या गैर मशीनीकृत मत्स्य नौका तथा वर्तमान वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों का वैध मत्स्य लाइसेंस होना चाहिए। इच्छुक मछुआरे आवेदन पत्र एवं

0: योजना की विस्तृत शर्तें मत्स्य कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 30 जून तक संबंधित कार्यालयों में जमा करने होंगे। आवेदन पत्र प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा कल एवं 18 जून को अंडमान सागर में अभ्यासात्मक मिसाइल फायरिंग की जाएगी। इस संबंध में नागरिकों को, विशेषकर मछुआरों और समुद्री गतिविधियों से जुड़े लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सूचना के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक तथा 18 जून को सुबह 7 बजे से 10 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मिसाइल फायरिंग का अभ्यास निर्धारित है। अभ्यास के दौरान अंडमान सागर का एक निर्धारित समुद्री क्षेत्र प्रभावित रहेगा। नौसेना अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभ्यास अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र नो फ्लाई जोन रहेगा। इसके साथ ही सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भारत और स्लोवाकिया की मित्रता का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने सम्मान को भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया। मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार स्पाइस प्रवाह 2.0 के अंतर्गत मसाला फसलों के पौधरोपण कार्यक्रम का कल शुभारंभ करेंगे। सांसद विष्णुपद रे ने 127 करोड़ रुपए की विकास निधि सरेंडर होने पर चिंता व्यक्त की। कैपिटल हेड बजट में आवंटित धनराशि खर्च न होने पर सांसद ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। और मत्स्य निदेशालय द्वारा 2026-27 के लिए अनिवार्य मत्स्य पालन योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू। मछुआरों को मत्स्य सामग्री पर 50-75% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हुई। जनसेवाओं और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार सागर तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेगी, जिसके कारण समुद्र अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी जॉली बॉय 17 तारीख को सवेरे 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी 18 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल 18 तारीख को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी उसी रोज रात्रि 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल बुधवार 17 तारीख को सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे स्वराज द्वीप लॉन्ग आइलैंड होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग कल बुधवार 17 तारीख को सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी कल बुधवार 17

तारीख को सवेरे 7 बजे लॉन्ग आइलैंड कदमतल्ला स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप शहीद द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी अगले दिन सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज कल बुधवार 17 तारीख को दिन के 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान इस बीच दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। स्वराज द्वीप से जलयान की वापसी दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हटबे कल बुधवार 17 तारीख को दिन के 11:30 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। शहीद द्वीप से जलयान की वापसी दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

एमवी नॉर्थ पैसेज कल बुधवार 17 तारीख को दिन के 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान इस बीच दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। स्वराज द्वीप से जलयान की वापसी दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे कल बुधवार 17 तारीख को दिन के 11:30 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। शहीद द्वीप से जलयान की वापसी दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जन सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जनसूचना समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4

0: Lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
1: Nexa. Discover kare driving perfection Maruti Suzuki Brezza ke saath. Isme hai 6-speed automatic 360 degree view camera aur latest technology. Yahi nahi, isme electric sunroof bhi hai. Safety ke liye 6 airbags, ABS aur ESP hain aur mileage bhi badhiya hai. 19.89 km per liter petrol mein aur 25.51 km per kg CNG mein. Buy offers up to 80,000.
2: All new Maruti Suzuki Brezza aapki nearest Maruti Suzuki showroom mein available hai. Sharte lagu.
3: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ, मन शांत और विचार सकारात्मक बने रहते हैं। यह हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। प्राणायाम और ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है। योग हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मसंयम की सीख भी देता है। यदि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए, जिससे जीवन स्वस्थ, सुखी और ऊर्जावान बन सके। दोस्तों, आज 16 जून है और आज के दिन हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास की पुण्यतिथि भी है। दोस्तों, देशबंधु चितरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, प्रसिद्ध वकील और समाजसेवी थे। उनकी पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर भारतीयों की आवाज़ को मजबूती प्रदान की। देश हित के लिए उन्होंने अपनी सफल वकालत तक छोड़ दी। 16 जून 1925 को उनका निधन हो गया। उनकी देशभक्ति, त्याग और नेतृत्व क्षमता आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है।

तो दोस्तों ये तो थी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम देश की शान में।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में अनेक ऐसे गायक हुए हैं जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में स्थायी स्थान बनाया। उस दौर के गीत आज भी लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। कुछ आवाज़ें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे हृदय को स्पर्श करती हैं। ऐसी ही एक गंभीर, मधुर और भावपूर्ण आवाज़ के स्वामी थे एक महान गायक, संगीतकार और निर्माता, जिनके गीतों में प्रेम, विरह, संवेदना और आत्मीयता का अनूठा संगम देखने को मिलता था। उनकी गायकी में ऐसी मिठास थी कि श्रोता गीत समाप्त होने के बाद भी उनकी धुनों में खोए रहते थे। हिंदी और बंगाली संगीत जगत में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। अपनी गहरी और

प्रभावशाली आवाज के कारण वे लाखों संगीत प्रेमियों के प्रिय बने। वह महान व्यक्तित्व थे हेमंत कुमार, जिन्हें भारतीय संगीत जगत में आज भी अत्यंत सम्मान के साथ याद किया जाता है।

की दुनिया में ही रमता था। युवावस्था में उन्होंने बंगाली गीतों के माध्यम से अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी मधुर आवाज़ ने जल्द ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रेडियो कार्यक्रमों और ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने संगीत सफ़र की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा को पहचान मिलने लगी और वे बंगाली संगीत जगत के उभरते सितारे बन गए। संगीत के प्रति उनका समर्पण और निरंतर अभ्यास ही उन्हें सफलता की ओर ले गया।

दोस्तों, हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी में हुआ था। उनका पूरा नाम हेमंत कुमार मुखोपाध्याय था। उनके परिवार का संबंध बाद में कोलकाता से जुड़ गया, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन से ही वे संगीत में गहरी रुचि रखते थे। यद्यपि परिवार चाहता था कि वे इंजीनियर बने, लेकिन उनका मन संगीत

हेमंत कुमार ने अपने करियर की शुरुआती दिनों में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बंगाली संगीत में लोकप्रियता मिलने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग की ओर कदम बढ़ाया। सन 1950 के दशक में उनकी आवाज़ और संगीत दोनों को व्यापक पहचान मिलने लगी। उन्होंने केवल गायक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सफल संगीतकार के रूप में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सन 1954 में आई फिल्म नागिन, सन 1962 की 20 साल बाद और सन 1964 की कोहरा के संगीत ने उन्हें

नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी आवाज़ में एक विशेष गंभीरता और आत्मीयता थी जिसने उन्हें अन्य गायकों से अलग पहचान दी। ये रात ये चांदनी फेर कहाँ, और न तुम हमें जानो जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और उनकी कला की श्रेष्ठता को दर्शाते हैं।

अपने लंबे और सफल संगीत करियर में हेमंत कुमार ने सैकड़ों गीत गाए और अनेक फिल्मों में संगीत दिया। उन्हें भारतीय संगीत जगत के सबसे बहुमुखी कलाकारों में गिना जाता है। उनकी रचनाओं और गायकी ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में उनकी लोकप्रियता समान रूप से बनी रही और 26 सितंबर 1989 को इस महान गायक का निधन हो गया। लेकिन उनकी आवाज़ आज भी अमर है। उनके गीत रेडियो, मंचों और संगीत प्रेमियों की स्मृतियों में आज भी जीवित हैं। हेमंत कुमार केवल एक गायक ही नहीं थे, बल्कि भावनाओं को सुरों में पिरोने वाले एक अद्भुत कलाकार थे। उनकी विरासत भारतीय संगीत जगत की अमूल्य धरोहर है और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

0: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग अब आप सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
3: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
2: जी,
3: विश्वास और जन कल्याण
2: जी,
3: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाते हैं। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
2: जी।
3: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा, जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
2: जी,
3: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जनकल्याण

0: ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है। लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल, सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
1: जी,
0: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है। क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं, वहां PM2.5 और PM10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में है उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज्ड मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें

0: लगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहां के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने NDC टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है,

0: और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी
1: जी
0: की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8,10,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहां प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर

0: के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहां पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नजदीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: हृदय के बड़ा नज़दीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया, और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूं कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
1: जी।
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
1: जी।
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी,
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी?
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक

0: दूसरे के पूरक है।
1: जी, हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की। तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नई एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: Say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
4: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
5: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
3: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest

Nexa showroom today. हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। उद्योग निदेशक अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा एमएसई ओडीआर योजना के अंतर्गत लीगल कंसल्टेंट के एक पद पर अल्पकालिक संविदा आधार पर मार्च 2027 तक नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक लॉ ग्रेजुएट होना तथा न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही न्यायालय, अर्धन्यायिक निकायों अथवा मध्यस्थ एवं सुलह से संबंधित मामलों में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। चयनित अभ्यर्थी को प्रतिमा ₹80,000 समेकेतिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पर पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित 19 जून 2026 को 4:30 तक निदेशालय उद्योग श्री विजयपुरम में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निदेशालय उद्योग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से संपर्क करें। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव कान के तहत कुछ देशभक्ति गीत।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ईबीएस और ईएसपी हैं. और माइलेज भी बढ़िया है. 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में. बाय ऑफर अप टू 80,000.
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है. शर्तें लागू.

संवेद स्वर में गाए इस देशभक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, गौरव गान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़े ही देर में अगला प्रसारण आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमरीका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार,

0: प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल

0: नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देशभर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जेसीएम के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
2: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its

0: other such incidents. Yeah. In the rural areas where young girls were picked up, you have Sondesh Khali incident where women were abused, sexually abused in party offices. All the details which are now coming out about student union offices, that those were actually houses of illicit pleasure.
1: Yeah.
0: So this is the kind of architecture you had put into place to stay in power. Obviously, people won't accept.
1: So Kanchanji, going forward, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
0: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution, and fair justice. Because अगर आपने जो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं, ये अन्याय किया है, इनको अगर सजा नहीं मिलता है, if they are not punished, then tomorrow you will find another set of exploiters coming into play. So ये जरूरी है. दूसरी बात जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा, किस किस्म का कट मनी. यू सी, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. तोलाबाजी इज कोई अगर रेड़ी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा. दैट इज तोलाबाजी. कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वॉज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा, और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा, उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा. आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है, वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी, जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: सो एन एब्सोल्युटली एक्सप्लॉइटेटिव.
0: इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल, क्या कहें, इट वाज अ फैक्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज एन इंडस्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी, तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये तीनों भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है. और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा. एंड वेस्ट बंगाल कैनॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. That we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: Like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British also began experimenting with their divide and rule policy, because they realized very early that if they have to

संध्या से आते हैं कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला फरमाइशी संदेश हमें भेजा है पदमपुरा जिला श्री गंगानगर से मेहर ममता कीर्ति भूमिका अरुणा ने। हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं त्रिशूल फिल्म का एक गीत, तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, लेवी गर्गी ने हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म सीमा का ये गीत। आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: दिल
1: किस पे है तेरा दिल
0: किस पे है मेरा दिल।
2: सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड से रमेश जयनारायण तरुण चौहान ने हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। श्रोताओं, ये सुनना चाहते हैं असली नकली फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

मजनू का टीला फिल्म से हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। ये हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं अंदाज फिल्म का एक गीत। श्रोता हैं कमला बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

मजनू का टीला फिल्म से हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। ये हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं अंदाज फिल्म का एक गीत। श्रोता हैं कमला बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए संबलपुर कांकेर से फरगुराम यादव ज्योति यादव ने हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। मौसम मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 7 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेगी। समुद्र काफी अशांत रहेगा, अतः मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 और 12 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23

हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: कभी
1: इसे माइक वन है
0: हाँ
1: ना,
0: माइक वन टाइमिंग हाँ
1: माइक वन टाइमिंग 4:42 1 सेकेंड
0: ठीक है तो बस एक माइक में अब ठीक है तो उधर से सिग्नल कट करता
1: जी।
0: हाँ अब ठीक है अब माइक टू
1: माइक 2 4:42 19 सेकेंड
0: ओके
1: ऐसा ना सर।
0: हाँ

0: टेस्टिंग लेफ्ट कंप्यूटर कार्ट वन, ये
1: हाँ
0: बंद कर। बोलना।
1: टेस्टिंग लेफ्ट कंप्यूटर कार्ट वन।
0: हाँ ठीक है।

0: लेफ्ट कंप्यूटर कट वन। लेफ्ट कंप्यूटर कार्ट टू। राइट कंप्यूटर कार्ट वन। राइट कंप्यूटर कार्ट टू।
1: योग से, व्यायाम से हम

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:28.40 हुए हैं। आज की हमारी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।